नारद मुनि के चरणा से ढह के इस प्यार वाले मन ने अरदास की थी, नारद जी तुस तानू जो मेरे भगवान के दर्शन जा रहे हो, नारद तुसी तानू जिन्हां नूं मेरे भगवान के दर्शन मिलणगे, नारद ने तकिया प्यार वाला मन, ए प्यार वाला कोई तपस्वी अखां विचों अथरू कह रहे है। नारद ने कहा क्यों रोंदा है, तैनू भी किसी चीज की लालसा है, जंगल बियाबान दे विच समाधि लगा के बैठे हैं, तू की चाहुंदा है। इस दियां कुब्बां निकलियां ते प्यार नाल इसने पढ़िया, नारद मेरी तां इक्को मंग है केड़ी।

आप अदिति जी आशा वाला जीवन बड़ा स्वादला हुंदा है, खुश रही भाई। आशा वाले जीवन में आस है ना, इंतजार है ना, एदे च बड़ा सुख है, एदे च कोई अगम्मी रस है। साईं दी याद विच, मालिक दी याद विच यादां भी पूरियां हो जांदियां, पर प्यारी सत्संगत याद विच भी रहना ए भी अवस्था है। मालिक दे दर्शनां दी प्यास विच इस जीवन नूं बतीत करना, हजूर फरमाउंदे ने मैं उस तों भी कुर्बान जांदा हां जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक तहके बल पर जैसा। इस प्यास च जीवन बतीत होंदा रहे फिर आपे मालिक मेहर करे। प्यारी सत्संगत जे एदियां आसां पूर्ण तां साडियां भी पूर्ण। खुश रही।

जिनी तुदनु तन के आ तेन जम नेड़ नया। कितनी बख्शिश होगी किनों ते जिन्होंने गुरु नु तन के है। आओ तन गुरु नानक दिया बख्शा प्राप्त करने वाली सर्वत माई पाई प्यार नाल सारे आखो तन गुरु नानक।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असी आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हाँ कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चे नाल गलबात पंजाबी विच करते हो तो आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है तो अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चिया पास पंजाबी विच गलबात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल दा समा उन्हां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे तो गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रहा, ओह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे, असीं तां उस ताते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उलटाई है तां ध्यान दियो ते ओह पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटाल हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जिया बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सज्जना मित्रां नूं भी इस सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगो दाते दा अपना काम है, आप ही सहाई होएगा। फिर लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

बहुत प्रसाद करावे पाठ करावे, पर जे निंदा हो गई ओ भी किसी महापुरख दी, ते कोई भी कीता होया कर्म फली भूत नहीं हुंदा। जेड़ा मनुख इस भयंकर रोग विच फसे है।

परम सत्कार योग साध संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़भागियों दूरों दूरों चल के करो गीत ध्यान संकोच के शरदा प्रेम भावना लेके जागत जोत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में पुजे आके गुरमुख प्यारियां तो गुरबाणी का कीर्तन गुर इतिहास सरवण कीता। जिन्ना समा होर महाराज बख्शदे ने अज इस पंडाल का पंजवां समाप्ति का दीवान है। सारियां संगतां गज बज के बोल के शरदा भावना नाल जेड़ी संगत बाद विच आ रही है शांति दे नाल गुरु महाराज दा अदब मुख रख के जिथे जिथे जगह मिलती है सतगुरां नूं हाजिर नाजिर समझ के बैठना ते लाहा प्राप्त करना। बहुत वड्डी किरपा होवे उदों सतगुर पातशाह जी किरपा करदे ने नगरां नूं गुरमुख प्यारियां नूं घर विच सेवा ते सिमरन दी दात बख्शदे ने। बाकी दातां जरूरी हन जीवन दा निर्वाह माया गुजरान है बहुत जरूरी ने पर मनुष्य दी समझ ज्ञान इस तल ते रुक गया कि अपनी जरूरत नू मंजिल समझ बैठे। एक मंजिल होंदी है एक लोड़ होंदी है जरूरत। जरूरत तो बिना मंजिल ते पुजिया नहीं जा सकता पर जे मंजिल ना आई ते लोड़ां व्यर्थ गईयां। जरूरत ते मंजिल इनू जटकी भाषा विच समझ लो जो कणक बीजी गई है रेह बूटे दी जरूरत है पानी बूटे दी जरूरत है गुडाई करनी बूटे दी जरूरत है। ते गुरमुख प्यारेओ मंजिल की है झाड़ निकले दाने पैदा हुए। हुण दोवां दा संबंध किन्ना है ते गुरमुख प्यारेओ सेवा तो बिना खर्च तो बिना बूटे दी जरूरत तो बिना झाड़ नहीं निकलना। पर जे झाड़ ना निकलिया वो रेह पानी व्यर्थ गया खुश। झाड़ की है वो भी तुहाडे सामने दी क्रिया है। गुरबाणी ने तो फैसला किया है आ जिहड़ी बाणी पढ़नी है ना नितनेम करना ये क्यों शुरू किया कीर्तन क्यों शुरू किया कथा क्यों शुरू की लो जे तुसी सच गल समझो इन्हां दी लोड़ नहीं सी। ये मजबूरी है मनुख दी समझ लो गुरमत विचों एक सानू अख दती है एक गुरमुख प्यारे वो कन दता है फिर मत दती है समझण वास्ते। जेड़ा आदमी देख के समझ जावे उन्हूं बोलने दी लोड़े नहीं हुंदी। जेड़े बंदे नूं देख के समझ आ जावे आ चीज आ है उन्हूं बोल के दसण दी लोड़ नहीं। जिन्हूं दिखे ना उहदे वास्ते बोलना ही साधन है। अंधा बंदा उन्हूं कहना पऊगा तेरे मूहरे चिक्कड़ है भी पासे हो जा उत्थे बोलने दी लोड़ पई।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ? ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਕੇ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨੀ। ਜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਦਿਖ ਜਾਵੇ ਮੂਹਰੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਗਿੱਲਾ ਮੂਹਰੇ ਕੰਡੇ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਪਾਸੇ, ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਦੇਗ ਵਰਤੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾਉਣ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦੂ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਦਊਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਜਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਬੋਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ।

केवल पता करना के बंदिया तू खुद की है। थोड़े जे बहम हो गया सानू, चलो वे चलिए संत केड़ी कहानी सुनाउणगे, केड़ियां के धारना पढ़नगे, अज किन्ने के चिमटे खड़कणगे, किन्ना क अमला फैला संत दे नाल फिरदा होगा अज के खुशद। बस जेड़ी गल है तो लैण आउणी सी, गुरुद्वारियां दा भी थोड़ा ही हाल है। जाने हो जाया करो गुरुद्वारियां च, की वेखदे उत्थे जाके बड़ा बड़ा हाल बणिया वे, बड़ा शंख मरमर लग्या वे, छे मंजिला बन गया, सिउना चढ़िया वे। जिस काम विचों गुरुद्वारे ने सानू कढ़ना सी ना माया विचों, गुरुद्वारे सगों पाउण लग पे अज के आखो सतनाम। जेड़ा जांदा उत्थे गुरु नूं नहीं देखदा वी गुरु दा इत्थे शब्द की है, गुरु तो उत्थे दे पत्थर लगे हुए देखदे ने, उत्थे दा संख मरमर देख, उहदी उचाई देखदे किन्नी क, उहदियां मंजिलां गिण के गुरुद्वारे दीआं किन्नीआं, इत्थे सिउना किन्ना लग्या, वाह हाल किन्ना वड्डा बणिआ वे। वाह सिखो पत्थर ते सिवना देखण गुरुद्वारे च जाणा, तीर्थ नहावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विच है। जे पत्थरां ते ही गुरुद्वारे दी महत्ता आ गई, जे वड्डे होण ते ही महत्ता आ गई, तुसी हैरान होवोगे पटियाले इक कोठी विकी है 7.5 करोड़ रुपये दी, इक कोठी ला लो पत्थरां दी कीमत, फिर मत्थे टेकण लग जाओ भी बहुत कीमती है अज के आखो सतना। हैरान करने वाली गल है 7.5 करोड़ दी इक कोठी, ना पटियाला ही है, कोई दिल्ली तो नहीं हैगी। ऐस गल पिछे आपां परमार्थ विचों निकल के पदार्थवाद दी पूजा, ताही ओ संगरूर दा इक हुंदा सी मेरे नाल भी जेल च रहा था, काली कवी जथेदार, वो कविता सुणाउंदा हुंदा था, कहिंदा जद सिखां दे गुरुद्वारे कच्चे थे ना, कहिंदा सिख बड़े पक्के थे, ज्यों कहिंदा गुरुद्वारे पक्के होण लगे ते सिख कच्चे होण लगे अज के आखो सत। गल उहदी बिलकुल खरी, जद पिंड च धर्मशाला ही हुंदी सी ना, गुरुद्वारा हुंदा ही नहीं सी, उत्थे ही सांझा खंड पाठ कराउंदे हुंदे आपां साल बाद, हर पिंड विच गुरु ग्रंथ साहिब दी भीड नहीं सी, मेरे देखण दी गल है। आनंद कार्ज किसे पिंड कराउण जाणा ते गुरु ग्रंथ साहिब दी भीड किसे पिंड तों लिआउणी, पिंड विच भीड नहीं सी हुंदी, पर उदों साडे मुंडे जरदा नीचे चबदे, बीड़ियां नीचे पींदे, दाड़ियां नीचे बढ़दे, ते भाई नूं भाई नीचा बढ़दा अज के खुश सतन। धी भैण दी इज्जत, बड़िया दा सत्कार, आ जिवें साडा अमला पहला वधिया ना, बस भाई इन्नी गल कर लो, जिवें डाक्टर पिंड पिंड हो गए ना, डिस्पेंसरियां पिंड पिंड हो गईयां, हस्पताल बीमारियां कहंदियां हो जाओ कट्ठे डाक्टर, असीं तुहानूं पता ही नहीं लगण देणा वी साडे नाम की है अज के आखो सत। हुण तुसीं पुछ लो वी डाक्टरो तुसीं बीमारियां घटाईयां कि वधाईयां, हथ बन्नदे फिरदे डाक्टर, चाहुंदे मन भी दी तां गल छड्डो अमरगढ़ दी, CMC PGI दिल्ली दा मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੇ ਲਿਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਦਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਡਬਲ ਭਾੜਾ ਲਾਊਗਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੋ ਗਏ ਈਰਖਾ ਤੇ ਦੁਆਇਸ਼ ਵੱਧ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਨਾ ਝੂਟਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਝੂਟਿਓ, ਲੋਭ ਨਾ ਝੂਟਿਓ ਦੇਵਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨੀ ਝੂਟੀ, ਨਿਪੁਲ ਪਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਕਰੀ ਜਾਓ ਮਨ ਸਮਝਾ ਲਉਂਗੇ, ਪਰ ਬਾ ਨਿਪੁਲ ਪਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨੀ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਈਦਾ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਟੇ ਨੇ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਊ 50 ਰੁਪਏ ਫੀਸ, ਹੱਥ ਬੰਨੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬੱਖੀਆਂ ਵੀ ਦੁਖਣ

आज पूर्णमासी दा ए समा ते पूर्णमासी दी ओ जिस दिन सर्दी बल्दी दुनिया नु तारन वास्ते मेरा धन गुरु नानक प्रगट होया करो अरदास भाई ते गुरु नु नेत्रां च विछाओ किरपे ते विछाओ अज राज बुलार अरदास किया कर रहा है आओ जिसने धरती नु पुटे नु पानी जरूर मिलिया जिसने खोजिया ओनु मालिक लभदा है जिस सिख ने मन जोड़ के बेनती कीती है ओदी अरदास जरूर सुनी जाए सारी आओ प्यारी साध संगत अज दा समा ए रात खास बख्शिश वाली है की पता हो जाए बख्शिश कोई वड्डी गल नहीं तो आओ तरला तो करो उद्दम तो करो ओ केड़ा उद्दम है अपने मालिक अगे अरदास सब तू वड्डी दात है जो गुरु ने सिख नु बख्शी है अरदास जिस अरदास दे सदके सिख गुरु नाल जुड़ जाना है राय बुलार रो

पिता जी मेरे नंकारी वीर नु ना मारो, मेरे रब्बी वीर नु ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा पिता जी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे नंकारी वीर नु कुछ ना खो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहे है, सड़ जावण ए हाथ जिना हथा नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दिया पुब्बा निकल गई। कालू हुण तां रो रो के अखां दा पानी भी सुख गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा गुरु नानक दे प्यार, गुरु नानक दे प्यार। लोकी कहंदे राय नू की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नू मुखातब होके कहंदा की

अरदास, सारी रात अरदास की थी। अमृत वेला हो गया, बेबे ने सोचे घर च दुध है, माता बेसुध पई है, दुध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैण इशनान किया, करदी पाठ ते दही रिड़काउंदी है, दही रिड़के सोना मक्खन कढे। बेबे ने अपने सुंदर हाथ दे उत्ते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखिया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच वी मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इहनू कुछ खिला। वीर मैं अपनी तली उत्ते मक्खन रख लैंदी, ते कहंदी सां वीर मैं अखां पहले खोलदी आं कि तू पहले मक्खन मुंह च पांदा है। ते बड़े प्यार नाल तू आके निमाड़ी भैण दे हत्थां तू मक्खन चुक के मुंह च पा लैंदा। अज वी ओही भैण वीर आए मक्खन तू खा, मक्खन तू खा, तली उत्ते मक्खन पिया है। बेबे दे नेत्र बंद हो गए, निमाणा मन उड़िया पहुंच गया। इधर मेरे धन गुरु नानक सचे पातशाह अमृत वेले कीर्तन जुड़े हैं, नेत्र खुल गए। मरदाने यार कीर्तन दी समाप्ति कर दी। बाबा क्यों, हजूर कहन लगे बेबे नानकी भी याद कर दी है। ओ सचे पातशाह किथे नानके आना ते किथे मक्का मदीना, इतनी दूर दी आवाजा किवें सुन लैंदे हो मेरे सचे पातशाह। अदूर कहन लगे हां मरदाने, तारा भी कई तरह दियां हैं। एक तार जेदे विच आरती लोग चिट्ठियां परो के रखदे सन, पुराना फैशन, अजकल तो फाइला बन गईयां न पुराने आरती, तार दे विच चिट्ठी परो के रखनी, ओ भी तार सी। मरदाने एक टेलीग्राम दी तार, मरदाने एक राग दी तार है। ए जरा कीर्तन हुंदा है ना, ए भी तार नाल हुंदा है। तार किथे है जोड़ी, ए भी तार है, पर मरदाने एक तार होर भी है। बाबा हो ही दस दो तो मेरे सतगुरु जी मरदाने नू उपदेश देन देन। किसे गुरमुख ने लिखिया है कि तार विनदी चीजां परोंदी है, तार विनदी चीजां परोंदी है, जेड़ी चीज उस अगे टिकाई जांदी, तार विच ही शब्द परो के ते खबर देश परदेश पहुंचाई जांदी, तार विच ही राग दी लड़ी बन के राग तार सुर तार मिलाई जांदी। पर बिना इना दे तार एक होर भी है, ओ सीने विनदी चित चुराई जांदी। ओ केड़ी तार है जो बेबे नानकी ने भेजी। मरदानी है नेत्र बंद कर छेती पहुंची, मरदाना अगे ही चाहुंदा सी, 12 सालां तों विछड़े आया सी भई अपने बच्चियां तों। नेत्र बंद कीते, खोल दे जो खोले, की तकिया मरदाने ने कि मेरा धन गुरु नानक नानकियाणे दियां गलियां च पिया जांदा है। आखो सही वारी, पर मरदाना काला है, 12 सालां तों बाद घर आया है, एना कलम काला है। हजूर कहन लगे मरदाने काल ना कर, आस्ता आस्ता तुर ते नाले कुछ जप। दाता जी की जपा, तो बाबा जी ये बचन करते सन के भाई जिस वेले गुरु नानक तरंडी आया ते हजूर ने मरदाने नु क्या, मरदाने ए पढ़ की